0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साइन चेक सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 7 AM बिहानको 7 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन्द नगरपालिका 5 सोलुखुम्बू
2: सोलुखुम्बू जिम एंड फिटनेस सेंटर उद्घाटन कार्यक्रम में हार्दिक निमंत्रणा
3: बलियो शरीर बलियो आत्मविश्वास स्वास्थ्य शरीर सफल जीवन सोलुखुम्बू जिला के पहिलो जिम एंड फिटनेस सेंटर सोलुखुम्बू सदरमुकाम सलिरी नया बजार में नगर प्रमुख श्री नांगदी तांगो शेर्पा ओडादस्त श्री फुर्पा ग्याल्जोङ शेर्पा जी को बहुनेता में उद्घाटन करने कार्यक्रम रहेको हुँदा उक्त उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थिति को लागि संपूर्ण उद्योगी व्यापारी कर्मचारी विद्यार्थी खिलाड़ी यसै सूचना मार्फत निमंत्रणा गरिन्छ उद्घाटन कार्यक्रम हुने मिति यही असार 11 गते बिहीबार बिहान 8 बजे स्थान सोलुखुम्बू जिम एण्ड फिटनेस सेन्टर नयाँ बजारको हल परिसर जजामावि खोलावारी
2: प्रोप्राइटर विपिन राई सम्पर्क नम्बर 98 13 16 97 62
3: सोलु दुखकुण्ड नगरपालिका 6 सल्लेरी सोलुखुम्बू

0: सड़क प्राय गडा ध्यान दियो। सड़क सीमा अतिक्रमण न करो। सड़क सीमा में अस्थायी एवं स्थायी संरचना निर्माण न करो। सड़क को नाली ठल तथा पानी निकास बंद हुन नदिऊ। सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गराउं। सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियम को पालना गरौं। सवारी साधन में झुंडीएर वा छत में बसेर यात्रा नगरौं। सड़क को क्षमता भन्दा बढी भार प्रयोग नगरौं। जेब्रा क्रसिंग बाट मात्र बाटो काट्ने गरौं। सड़क को तत्काल मर्मतमार गर्ने गरौं। यात्रा को क्रम में कुनै समस्या भए नजिक को प्रहरीलाई खबर गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी सन्देश। मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं। सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं।
0: मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं। मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूप में लिने गरौं। प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण में सचेत बनाऊ। जलवायु परिवर्तन का असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं। वन संरक्षण और वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ। ऊर्जा बचत स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाऊ। वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाऊ। वातावरण संरक्षण करौं। जीवन रक्षा करौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी सन्देश।
0: यौनहिंसाबाट बचौं र बचाऊ। यौनजन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो। बालबालिका यौनजन्य हिंसाको जोखिममा हुन सक्छन्। हिंसा छिमेकी आफन्त साथीभाई परिचित नातेदार र जोसुकीबाट हुन सक्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं। बालबालिकाको चालचलन बानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ। त्यस्तो पाइए उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं। बालबालिकासँग नियमित सम्वाद गर्ने गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी सन्देश।
2: जिन्दगी चल्दै त ऐसामा त सुतेर उठेको पैसामा छैन मनमा चोट सुखिलो त चोट मेरो घरको गरेसामा पैसाको मोट राजाको गद्दिनी दाजु म त पैसाको

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोनी एफएम स्टूडियो टाइम
2: 10 एम बिहारको 10 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू तुतुन नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु

0: কল প্রিন্ট রূপকর্ত রকম কবারী সাধন নম্বর একিম গণেশ সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহরু তপাইলে আফ্নো সওয়ারী সাধনকো বার্ষিক রূপমা বুঝাউনু পর্ने সওয়ারী কর নবীকরণ বস্তু र লগায়ত অন্য কর সম্বন্ধী বিতরণ হেনকা লাগি সম্বন্ধিত यातायात কার্যালয়মা গৈর কর প্রিন্ট মাঙ্গ ব্যাংক ভৌচার গর্ন অগি সওয়ারী কর তথা বস্তু একিম গর্ন তথা কর বুঝাই পছি প্রাপ্ত হুনে বিমা আফ্নো বুঝাইকো করকো রকম র আফ্নো সওয়ারী নম্বর একিম গর্ন হুন এসেই সূচনা মারফত অনুরোধ গরিন্ছ
1: यसै प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय विराट नगर
2: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं
3: मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण गरौं जीवन रक्षा गरौं
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
3: बालबालिकालाई लागू औषध दुरूपयोग हटाउँछ
0: लागू औषध सामाजिक अपराध हो कोही कसैले प्रयोग नगरौं बालबालिकालाई लागू औषधको प्रयोगबाट टाढा राखौं बालबालिकाको संगतमा ध्यान दिउ लागू औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिउ बालबालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौं बालबालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौं विद्यालयमै जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौं बालबालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौं
3: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा सारी सन्देश
0: सवारी साधनको इन्जिन र चेसिस रूपकरण सम्बन्धी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरू तपाईले आफ्नो सवारी साधन नयाँ खरिद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधनको इन्जिन र चेसिसको अवस्था रुजु वा अन्य कुनै कैफियत भए नभएको रुजु गरेर मात्र खरिद बिक्री गर्नका लागि यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ
3: कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विराट नगर
0: सड़क प्रयोग गर्दा ध्यान दिउ
3: सड़क सीमा अतिक्रमण नगरौ सड़क सीमामा अस्थायी एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरौ सड़कको नाली ठल तथा पानी निकास बन्द हुन नदिउ सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गराउ सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौं सवारी साधनमा झुन्डिएर वा

0: ведет прошлые века. И с собой песен Лесного Хамрон Пахидора Дай.
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जिंदगी से जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भैर निर्माण कार्य क्रम में माथिलो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहता तल्लो फेरा साधन क्षेत्र में घासपात काटने गाई बस्तु चलाउन तथा आवत जावत करने पूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारण सावधानी अपनाउन हुने यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। क्षेत्र में अनावश्यक रूप में न जानु देश में आपका बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखिदेश सुनील जिंदी उपभोक्ता समिति बचाऊ र बचाओ यौनचन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका यौनचन्य हिंसा को जोखिममा हुन सक्छन्। हिंसा छिमेकी आफन्त साथीलाई परिचित नदिँदा र जोसुकीबाट हुन सक्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं। बाल बालिकाको चालचलन बानी बेहोरा अतिभावी परिवर्तन आएको हुन सक्छ। त्यसको पनि उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं। बाल बालिकासँग नियमित सम्पाद गरौं। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहितमा

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चौकमा
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्केल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथै सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेन्स को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाङ ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842880300

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्र
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर

0: 삼부로 모시도록하이.
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जुन बेसी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य क्रम में माथिल्लो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो खेरा फाटन क्षेत्र में घासपात काट्न गाई वस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत गर्ने स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र में अनावश्यक रूप में नजानुहोस् र आफ्ना बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राखिदियोस्। सुनिल जुन बेसी उपभोक्ता समिति सुनिश्चित

0: सुनिए ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क
1: लोकलहरी उज्यालो रेडियो नेटवर्क मा यो हो लोकलहरी।

0: 才有马祖女所录 FM
1: सोलु FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: संचय सोलु FM स्टूडियो टाइम
3: इट्स 4 PM अपराह्न को 4 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभ

0: गुड आफ्टरनून नमस्ते नमस्कार सम्पूर्ण हार्दिक स्वागत को साथ में कार्यक्रम गीत गीत को विषय लिने तपाईको रेडियो स्थित में हामी उपस्थित भइसकेका छौं। प्राविधिक मित्र को साथ में आवाज में सुशर्मिला र सुभाजी आज भी हामीले एकदम मीठा मीठा पाँचवटा विभाग का गीत लिएर तपाईको रेडियो स्थित में गुंजन थालिसकेका छौं। तपाईले हाम्रो श्रोता मित्र कार्यक्रम गीत गीत को पर्खाई में आउनुहुन्थ्यो होला, तपाईको पर्खाई को समय समाप्त भइसकेको छ। टेलिफोन लाइन भी खुला कर सकता छूं। सुनो आशुवस्तु गीत का क्लिप शुरू।
1: अक्षर

0: Raio Rádio Sono é Tempo.
1: Sono FM 101.2 MHz. उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: सन्चे सोनिया फिल्म स्टुडियो टाइम
3: साइज गेम साँझको पाँच बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका पांच सोलू खुम्बू

0: ओल्ड एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू तुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Sony FM. In studio time.
4: It's 7 p.m.
5: को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: Raio Rádio Mix, todo é tempo.
1: Sonu FM, XA1.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Sound check. Sonu FM, studio time.
3: It's 8 p.m. रात को 8 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

आई छत बजावन तो ठोका खानी दुई मुट जन गाई न बलरे भोली लुकी खानी हालो की रती को गोली माया लुको तक तिमी औसु तिमी बोली ए पारे भुत के

मुस्कु मुस्कु हंसी क्यों ना मेरी जिंदगी रानी छिपा रहे हो आप खतानू तानू मन मेरे राख कुछ करो मचानू छिपा

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 10 पीएम रात को 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंभू